0: पीछा से बनता शेर और बासे बनती बकरी, शेर के आगे बकरी में मैं किसका ज्यादा नाम।
1: मस्त बने मदारी और बासे

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी टाण आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिंस कांतोर यूरन 020 409 0807।

होई होई के कुड़िया शेर दिया दिलेर मेहंदी नेहा कक्कर एंड तानिश्क बागजी से आप इस गीत को सुने एंड अगला गीत लंबा

लंबोर्गिनी। हाँ, मोई गाना लंबोर्गिनी के तबला तबला रीमिक्स आप सुने, मोई लगे है तो। तब एगो और पेश है लाल घगड़ा गीत का बोल उजाला रेडियो पर।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: जाए।
1: अरे कजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। लता जी एंड किशोर कुमार फिल्म अपना देश का गीत सुनने वालों, अगला गीत देखा जाए तो शैलेंद्र सिंह की आवाज में होंगे।

मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको बस शायरी आ गई। शैलेंद्र सिंह की आवाज, फिल्म बॉबी का गीत, एक बार फिर किशोर कुमार के साथ लता जी को आप सुनेंगे।

0: दिल सुबह और शाम फिल्म रामपुर का लक्ष्मण उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

टिप टिप बरसा पानी भी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आयत द फिल्म मोहरा उजाला रेडियो के जरिए भी हम लाने वाले हैं दिल है सनामी स्टोन फ्रॉम सूरीनाम और भी रॉबी मक्का के साथ भी हम आपसे उनसे हम बात करेंगे। ik ga zo meteen praten met Robby Makka. Dus blijf afgestemd. Sanam dit keer samen jaar en Robby is weer terug van vakantie. आज शुरू हो गया है नवरात्र, हरि को नवरात्रि का बधाइयां पेश किया जा रहे हैं। शुभ नवरात्र उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से। इस गाने के बाद में सरनाम देश का समाचार, दिल है सरनामी द स्टॉन फॉन सूरीनाम। जो मेन इस गाने के बाद में शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, बधाई हो।

उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारे बधाइयां और शुभकामनाएं पेश किया जा रहा है। और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको खास प्रोग्राम बनवाना है, नेम कॉन्टैक्ट को मैट उजाला रेडियो फिया info@ujala.nl। उजाला रेडियो के जरिए हम यहीं से अब शुरू करते हैं वही प्रोग्राम दिल है सनामी दस्तान फांसुरी नामा।

यू आर उजाला रेडियो, ये है और जैसे रॉबी मक्का ने फरमाइश की है, het is vandaag de verjaardag van de enige echte Amitabh Bachchan. En केना है अमिताभ बच्चन के फैन इधरीन तो छोटे से लेकर बड़े तक विद हिम से हम opgegroeid. En zover ik het kan beoordelen is die man ook down to earth.

या और किशोर कुमार की आवाज में एक और नाम हम आपको सुनाने को जा रहे हैं एंड दिस कम्स आउट द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन की फरियारी है तो सला तो बेच फिर नाम सुजाला रेडियो फेलिस्टेर हो अमिताभ बच्चन एंड आज यही वंदा यार बन तो तोके भी हमारा फेलिस्टेर करें ऑफ दिस मोया रेगनachtige अब तो घाम कर गया

0: रोते हुए इगनोज हम सुन इला तो हमें याद आवे है गया सुरिनाम में ही फिल्म जब रिलीज हुए रहा तुम सुनो हेलर क्लैन हो बहुत छोटा रिलीज मैं हमारे भाई लोगों भी जाता है फिल्म देखे मैं देखेंगे से ना मिड नाइट मैं देखेंगे से हम 12 सवेरे 6 बजे आता है मिड नाइट देख के फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये नाम भी आपने सुने हैं रोते हुए और उजाला रेडियो के जरिए छोटा सा डायलॉग हम आपको सुनाने को जा रहे हैं।
1: लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ सच कहा मौसी बड़ा बोझ है आप पर
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता बुरा नहीं मानना इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है उसके लक्षण कैसे हैं कमाता कितना है
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता
2: नहीं नहीं ये मैंने कब कहा मौसी कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना कभी हार भी जाता है बेचारा
1: हार जाता है
2: हाँ मौसी अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी अब मैं क्या कहूँ
1: तो क्या जुआरी है
2: छी छी छी छी मौसी वो और जुआरी ना ना वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है
1: ठीक कहते हो बेटा जुआरी वो शराबी वो लेकिन उसका कोई दोष नहीं
2: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं वो तो इतना सीधा और भोला है अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक
2: मौसी आप वीरू को नहीं जानते विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा बस शराब अपने आप छूट जाएगी
1: हाय हाय बस यही एक कमी रह गई थी तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है
2: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं
2: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है
2: अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं
1: पक्का भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली सगी मौसी हूँ कोई सौतेली माँ नहीं
2: अजीब बात है मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया बेचारा वीर लगाने क्या करें
0: गाना हमें सुनाए कि पड़ेगा
3: शिमारू के लाइव
0: और वो भी ये गाना है शोले का यह गाना नहीं ना आला था ये गाना हमें सुनाए कि पड़े ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे एंड दिस होरी नेचुरली आल्टेड अन द एंड ऑफ ऑन्स कॉन्सर्ट इन द मेयरफार्म जब हम लोग मेयरफार्म में कॉन्सर्ट कर लिया तो ये गाना हम लोग आल्टेड सुनाइला और गाइला भी ja, intussen is mijn koffie helemaal koud geworden. Dankjewel, Robbie. Doe het naast Spang Spang betalen.

साथी रे तेरे बिना क्या जीना। और ये बतिया रोज तू बोलिए अपन फ्रेंडेन या फ्रेंड से या पति या पत्नी से बीवी से खाविन से कि ओ साथी रे तोर बिना हम ना रह सके।

कुदरत का करिश्मा, एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरजमी पर किस्मत को है आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज ना भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमसे पहले प्रोग्राम को भी आप लोग सुन रहे थे लोहित महावीर के जरिए, यहां से लेकर ठीक 6 बजे तक आप लोग, 5 बजे तक आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप एक हार्दिक से बधाइयां और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। आज इतवार का शाम का वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम सोंदाग 11 अक्टूबर। खुद मेरा खलमा, वेलकम यार, यहां से आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और आज से नवरात्रि है और ये पहला नवरात्रि है माता श्री शैल पुत्री का, तो इस नवरात्रि के उपलक्ष पर आप सभी सुनने वालों को बधाइयां, शुभकामना हमारी तरफ से। चाहे जहां पर आप लोग इस त्यौहार को मनाते होंगे, नवरात्रि, आप सभी को बधाइयां। माता श्री शैलपुत्री का पहला नवरात्रि है, आप सभी को बधाइयां शुभकामना के साथ आरंभ करता हूं एक सुंदर सा भजन, और इस भजन को गाने वाले होंगे क्रिस राम खेलावन जी।

नवरात्रि आ जाई है, आज पहला नवरात्रि और पहला नवरात्रि है माता श्री शैलपुत्री का। ये नवरात्रि सभी सुनने वालों को बधाइयां शुभकामना हमारी तरफ से। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। करीबन 13 मिनट व्यतीत हो चुके हैं, 3:00।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो ये हो सकता है। अगर आप हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 6 3 0 8 0 8 पर आप लोग हमें ऐप कर सके। तो आप सभी सुनने वालों के लिए हम कुछ ना कुछ बैठ गाना जरूर से चला देंगे।

वेल शाबाश शाबाश नहीं चाहिए रंग महल। इस तरह से द किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अलमेरे में देखा जाए प्रोग्राम को भी बैठ कर सुने हैं माला मुंगार ये बैठ गाना तुम्हारे नाम

यार जरा गलियों में हमरे आजा रामदेव चैतू का बेटा प्रदीप चैतू के वास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो

शाबाश शाबाश करके सिंगार सिलोचना जी आई। और इस तरह से स्वर्गीय पंडित रामचंद्र बंसीधर जी के आवाज में ये सुंदर सा बैठक गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वेल, हमारे प्यारे सुनने वाले उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज इतवार का शाम का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा। एंड अब की बार चलिए तो कपेला ऑन द आइसल में, जहां पर इस वक्त ग्लेन गंपत भाई जी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, तो ये गाना आपके नाम कर देता हूं। एक बार फिर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है स्वर्गीय पंडित रामचंद्र बंसीधर जी।

शाबाश बोले लागल करे जुआ पे चोट। और इस तरह से पंडित रामचंद्र बंशीधर जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, और मेरे मेरे का जय भाई प्रकाश चंद्र का सिंह भी प्रोग्राम को बैठ के सुनते, ये गाना आपके नाम।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे बिजनवती चैतू जी के आवाज में हमारे प्यारे सुने वालो और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे बस जाइए सुनते ही जाइए और खास करके 5 बजे शाम तक आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

0: आपकी बार प्रोग्राम में जो बैठक गाना आप लोग सुनेंगे और गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।
1: अरे जबी जब रानी मोरा

शाबाश शाबाश। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, खास करके द किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अम्सराम का रहने वाला भाई धीरज सीताराम के लिए गाना पेशा।

वल्ले शाबाश शाबाश बोले कह दो सवालिया से बोले आया करे या तो जाया करे अवसर से खास करके साहेब हनीफ रोजन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने वेल तो के घर व काम के होइगे घर के काम काज होइगे कि ना बे यार

वाले शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप लोग अपना घर के काम करते होंगे, क्योंकि नवरात्रि है, ये नवरात्रि के मौके पर आप सभी सुनने वालों को बधाइयां शुभकामना, ना तो घर बचाई साफा हो के, और अगर आप लोग घर साफ करते होंगे हमारे साथ तो ठीक है। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, खास करके देखा जाए अब की बार गाना जो आप लोग सुनेंगे तो अमसरम सही, तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, तो ये गाना आपके नाम कर देता हूं। अरे राजा आई बोल।

मित्र सिंह जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, स्वर्गीय कुमार मित्र सिंह जी के वास में। और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 8 मिनट बाकी रहा 4 बजे में। अखमनितुल फुफीर एंड हार्लेम शहर में भी देखा जाए, सीता भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने। और

बना कर देखो मोहब्बत क्या होती है, दिल दिल से मिला कर देखो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी। और चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, घड़ी से हम देखते करीबन 2 मिनट बाकी रहा 4 बजने में, तो

और आज जबकि पहला नवरात्रि है माता श्री शैल पुत्री का, तो ये नवरात्रि सभी सुनने वालों को बधाइयां शुभकामना हमारी तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए।

Jabel, I boy, you are Ujjala Radio, West Indies का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा है यार, इतवार का शाम।

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dus er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het op onthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: उज्जला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज इतवार का शाम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों चलिए दूसरा भाग के प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे और दूसरा भाग में गाना जो

वल महकती रही थी राजा तोरे बंगले में, आई सर से जयंती महावीर के वंश में, गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। और चलिए अब की बार तो देखा जाए तिलबेरुख शहर में, जहां पर इस वक्त रानी जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना तुम्हारा

वल्ले शाबाश शाबाश लो प्यार के हो गए जीत एंड बलम हम तेरे हो गए। कल जान के लिए गाना जो आप लोग सुने द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवनाथ जी के आवाज में एंड जय हम सलम सही तो उसमें बैनी रामशरण भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने।

बलियार कल चौधरीविका रात थी। और इस तरह से संदीप बदलू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी। और देखा जाए हमारे मामा जी श्रीमान पारस मुरली एकदम स्पाइयम में लॉरेट मार में प्रोग्राम को बैठ करके सुने वहां पर, तो चलिए वहां पर आप सभी के लिए जो फकांसी से वहां पर है लॉरेट मार में, तो ये गाना पेश है आप सभी के लिए। अन मामा जी ये गाना भी तुम्हारे नाम।

वेल शाबाश शाबाश शाबाश यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने संदीप बदलू जी के आवाज में और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम और वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम में अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए स्वर्गीय किशन भोला सिंह के आवाज में। और ये गाना पेश है देखा जाए लेमन में पवन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने तो भाई पवन ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ। और चलिए और इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे

कल फिर क्या होगा, क्या पता, क्या खबर। और इस तरह से स्वर्गीय किशन भोला सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, गायत्री भी प्रोग्राम को ब्रेडा शहर में बैठकर सुने एंड गायत्री

शाबाश शाबाश जयंत महावीर, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा यार, और चीजवा इंद्रनाथ ऐसे भी हैं, बोले जो गुजर जाए वो कभी ना आवे है। वेल थैंक यू वेल, और चलिए अब की बार दीपक कन्हाई के वाल्स में गाना जो आप लोग सुनेंगे एंड ब्यूटीफुल मोरे रानी।

0: ब्यूटीफुल मोरे रानी रे जब तू कंवरिया ही लावे एक दिन तो के अपन दुल्हनिया बना के ले जाइबे। और इस तरह से दीपक कन्हाई के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों बैना बैना यार ट्वेंटी मिनटन फोर फाइव एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और यू आर उजाला रेडियो है। हाय बोई इतना हल्दी टेमुआ दोन इतना हल्दी टेमुआ जा है और गनवा इस तरह से अशोक मंसराम प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।
1: आय ससुराली
0: अरे बाप रे
1: आय ससुराली।

जय बे ससुरारी, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, वेल यू आर उजाला रेडियो जबल यार, हियर वी गो आई बॉय।

0: सी अखिया बोले ढूंढे तेरा प्यार अजना बलम। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 12 मिनट बाकी रहा 5:12:45 और अभी तक आप लोग सुन रहे उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। जबल आई बॉय चले है वेल वेल वेल
1: आज चलियो कि ना
0: तो हिला देना यार
1: कि नहीं आज चलियो कि

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में, और हमारे प्यारे सुन लो एक आखिरी बैठक गाना आज का प्रोग्राम में, और ये आखिरी बैठक गाना को नाम हम कर देते हैं अर्जुन बिहारी प्रोग्राम को बैठक।

शाम इतवार का रात्रि मोई से बिताइयो। अपने आप के जरूर से ख्याल कीजिए, जो भी आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना, जो भी कहना है प्यार से बोल दें कि हाँ हमें तुम्हें प्यार है यार। आप लोग मोई से रहिए।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, इसी गाने के साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का बैठक गाना का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोग अपना इतवार का

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

टिप टिप बरसा पानी भी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आयत द फिल्म मोहरा उजाला रेडियो के जरिए भी हम लाने वाले हैं दिल है सनामी स्टंट फ्रॉम सूरीनाम और भी रॉबी मक्का के साथ अभी हम आपसे या उनसे हम बात करेंगे। एक सोमतें प्रात में रॉबी मक्का दस ब्लाइव अफगस्टेम्ड सनाम दिस की समझार और रॉबी इस वे तुरंत फ्रॉम वैकेंसी। आज शुरू हो गया है नवरात्र, हर को नवरात्रि का बधाइयां पेश किया जा रहे हैं। शुभ नवरात्र उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से। इस गाने के बाद में सनाम दिस का समाचार दिल है सनामी द सॉन्ग फ्रॉम सूरीनाम ज़ोमटेन। इस गाने के बाद में शुभ नवरात्रि शुभ नवरात्रि शुभ नवरात्रि बधाई हो।

उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारे बधाइयां और शुभकामनाएं पेश किया जा रहा है। और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको खास प्रोग्राम बनवाना है, नेम कॉन्टैक्ट मैट उजाला रेडियो फिया info@ujala.nl। उजाला रेडियो के जरिए हम यहीं से अब शुरू करते हैं वही प्रोग्राम दिल है सरनामी दस्तान फांसुरी नामा।

यू आर उजाला रेडियो, ये है और जैसे रॉबी मक्का ने फरमाइश की है, इट इज वनाग द फरियादग फन द एनिग एक्टर अमिताभ बच्चन. केना है अमिताभ बच्चन के फैन iedereen toch, छोटे से लेकर बड़े तक. Met hem zijn we opgegroeid. En zover ik het kan beoordelen, is die man ook down to earth.

0: रोते हुए इगनो जब हम सुन इला तो हमें याद आवे है गया सुरीनाम में ही फिल्म जब रिलीज हुए रहा तुम सुनो हेलर क्लैन बहुत छोटा रिलीज मैं हमारे भाई लोगों भी जाता है फिल्म देखे मैं देखेंगे से ना मिड नाइट ना देखेंगे से हम 12 फिर सवेरे 6 बजे आता है मिड नाइट देख के फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये नाम भी आपने सुने हैं रोते हुए और उजाला रेडियो के जरिए छोटा सा डायलॉग हम आपको सुनाने को जा रहे हैं।
1: समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ सच कहा मौसी आपने बड़ा बोझ है आप पर
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता बुरा नहीं मानना इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है उसके लक्षण कैसे हैं कमाता कितना है
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता
2: नहीं नहीं ये मैंने कब कहा मौसी कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना कभी हार भी जाता है बेचारा
1: हार जाता है
2: हाँ मौसी अब ये कंबक जुआ चीज ही ऐसी अब मैं क्या कहूँ
1: तो क्या जुआरी है
2: छी छी छी छी मौसी वो और जुआरी ना ना वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है
1: ठीक कहते हो बेटा जुआरी वो शराबी वो लेकिन उसका कोई दोष नहीं
2: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं वो तो इतना सीधा और भोला है अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक
2: मौसी आप वीरू को नहीं जानती विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा बस शराब अपने आप छूट जाएगी
1: हाय हाय बस यही एक कमी रह गई थी तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है
2: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं हाँ।
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं
2: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है
2: अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं
1: पक्का भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली सगी मौसी हूँ कोई सौतेली माँ नहीं
2: अजीब बात है मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया बेचारा वीर न जाने क्या करे
0: गनवा हमें सुना है भैया
3: शिमरू के नए
0: और वो भी ये गाना है शोले का Ik kan het niet nalaten. Ik kan nog een keer zeggen, deze doos die En dit hoor je natuurlijk altijd aan het einde van onze concerten in de Meervaart. Je hebt nog Meervaart met concert kunnen leren. Ik kan nog een keer altijd Sunaila of Gaila hier. Ja, intussen is mijn koffie helemaal koud geworden. Dankjewel, Robbie. Doe het naast Spang betalen.

साथी रे तेरे बिना क्या जीना। और ई बतिया रोज तू बोलिए अपन फ्रिंदेन या फ्रिंद से या पति या पत्नी से बीवी से खाविन से कि ओ साथी रे तोर बिना हम ना रह सकेला।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और प्रोग्राम का इस भाग सुनने वालों उजाला रेडियो पर जो अब बनाया जाएगा नवरात्र के उपलक्ष्य पर, तो हम लोग बना सकेंगे किसी के मदद से जो गुप्त दान किए है। तो इसने जो गुप्त दान दिए है इनकी तरफ से शुभकामना बधाइयां पेश है नवरात्र के उपलक्ष्य पर आप हर एक सुनने वालों को इस प्रोग्राम के साथ में।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, नवरात्र के उपलक्ष्य पर आप अब प्रवचन सुनेंगे और ये है मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम राम लोचन तिवारी जी के जरिए।

उजाला रेडियो के माध्यम से नवरात्रि की इस विशेष कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को जय अम्बे जय जगदम्बे। जैसे आप सभी को पता है तो आज नवरात्रि की शुरुआत तदख पर नवरात्रि, और इसमें हमें ये सो अवसर मिलता है कि हम अपने आप को भगवती दुर्गा से नज़दीक लाने की कोशिश करें। इसमें दो बातें हैं, एक तो हमारे यहाँ जो नवरात्रि का महत्व है उसमें हम भगवती दुर्गा के ही जो तीन रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी आराधना पूजन नवरात्रि के तीन तीन रात्रि में कर सकते हैं। पहला तीन रात्रि जो है भगवती महाकाली के लिए, दूसरी तीन रात्रि भगवती महालक्ष्मी के लिए, और तीसरी तीन रात्रि भगवती सरस्वती के लिए, तो नवरात्र हो जाएगी। दूसरा विधि ये है कि नवरात्रि की एक एक रात में हम भगवती की एक एक रूप की आराधना करें। जैसे आपको पहले बताया गया कि भगवती दुर्गा की नौ रूप हैं, तो नौ रूपों में आज भगवती शैलपुत्री की पूजन आराधना की जरूरी है। कल आपसे व्रत के विषय में बताया गया, और ये भी बताया गया था कि आप अगर जो चाहें तो बिना अन्न के, बिना चावल के रोटी खा करके व्रत कर सकते हैं, आप फल दूध के साथ व्रत कर सकते हैं। देखिए एक बात और बता दूं, इस समय काफ़ी लोग इन बातों को पूछ रहे हैं भी कि व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं, दही खाना चाहिए या नहीं। तो इतना जाने रहिए कि हमारे यहाँ जो भी बातों को बताया जाता है वो ऋषियों का विचार है। अब कोई अनायास इनेंस ये कहने लग जाए कि व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध में गाय का खून है या कुछ और, तो ऋषियों ने इन बातों को नहीं बताया। वे कहते हैं कि दूध जो है वो तो शुद्ध पदार्थ है, तो इसलिए हमें व्रत में दूध पीने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, दूध से प्रसाद बनाने की कोई परहेज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही, गौमूत्र, गौ का गोबर, ये पांचों हमारे यहाँ पर पवित्र माने गए हैं, और इन पांचों का समय समय पर हम लोग काम में लाते हैं। गोबर और मूत्र बहुत ही कम, पर गाय के दूध, घी और दही तो सभी लोग अपने यहाँ पर काम लाते हैं। पंचामृत में तो इन तीन चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है, मद और चीनी वो तो अलग से मिलता ही है उसमें, तो गाय के दूध जरूर पियो, गाय के दूध से प्रसाद जरूर बनाओ, गाय के घी के दीपक जरूर जलाओ, गाय के दही के भोजन जरूर करो, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। तो गौ दूध, उसके बाद में नवरात्रि में यह अलग बात है कि गाजर, मूली जैसे पेंचस, और क्या नाम है, प्याज, लहसुन, मटर और मसूर के दाल जो औरैया दाल होता है, ये वाटरमेलन, इन फलों को और इन चीज़ों को नहीं खाया जाता। पर दूध भात चीनी डाल करके, या चीनी के रोटी, पटेटा के रोटी, आलू की रोटी, ये सब चीज़ अगर जो आप खाना चाहें तो ज़रूर खा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में इन चीज़ों को भी नहीं खाया जाता है क्योंकि ये पिसान जो है वो भी अन्न में ही गिनती है, इसलिए वहाँ व्रत में जो आटा काम में लाया जाता है वो है सिंघाड़े का। पर
वो आटा शायद यहाँ के लोग ना खा पावे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। जैसे आप करना चाहें वैसे आप करें, पर जरूरी ये है कि जरूर कुछ न कुछ करें। इसके साथ जो है तो आदि शक्ति माता जगदम्मा से नजदीकी बनाए रखने के लिए सबसे पहले भगवती शैलपुत्री की ध्यान जरूरी है। उसके विषय में हमारे यहाँ पर भगवती शैलपुत्री के जो रूप का वर्णन किया गया है वह वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीं यशस्विनी। माँ दुर्गा के पहला स्वरूप जो है वो है शैलपुत्री के। शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय के वहाँ पर पुत्री के रूप में जिसका जन्म होता है वो है भगवती शैलपुत्री। माता शैलपुत्री वृषभ माने बैल पर बैठी हुई है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल का फूल है। भगवती के ऊपर चंद्रार्थ कृत शेखराम, आधा चंद्रमा उसके मस्तक पर सुशोभित है। भगवान शंकर के अति प्रिय भगवती शैलपुत्री है। तो शैलपुत्री का ध्यान, शैलपुत्री की आवाहन और आदि शक्ति भगवती के दुर्गा के रूप में किया जाना चाहिए। भगवती शैलपुत्री के जो नाम है उस पर भी विचार करें, जो पहाड़ की पुत्री है। अच्छा, इसको अपने जीवन में हम कैसे लें? तो आप जानिए कि जिस दिन हम व्रत शुरू करते हैं वह दिन कितना मेहनत वाला और कितना कड़ा सभी लोगों को अनुभव होता है, और है भी कड़ा, क्योंकि रोज हमें खाने की पीने की आदत है और अचानक उस आदत को हमें बदलना है तो पहला दिन हमें बड़ा मुश्किल लगता है। पर अगर जो उस दिन को हम हिम्मत के साथ और श्रद्धा के साथ पार करें तो भगवती की कृपा प्रसाद जो है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे भगवती शैलपुत्री हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमें अपने व्रत में अपने पूजन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। उसके बाद में नवरात्रि में जो योग साधना के द्वारा भगवती दुर्गा की उपासना पूजा पाठ आदि करते हैं वे अपने मूलाधार चक्र में भगवती शैलपुत्री की ध्यान करें, जिससे हमारी योग क्रिया में शक्ति आएगी और हम उस योग क्रिया के जरिए आगे को धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इन्हीं शब्दों के साथ नवरात्रि के इस पहला प्रवचन को मैं समाप्त करता हूँ और आप सभी के लिए मंगलमय कामना करता हूँ कि आदि शक्ति माता रानी हम सभी के घर घर में विराजमान हों, सभी के ऊपर कृपा करें, हम फूलें फलें धर्म में रुचि रखें, व्रत पूजन पाठ संयम नियम के साथ आगे के जीवन को बिता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद।

और प्रिय सुनने वालों, अभी प्रवचन आप सुने नवरात्र के उपलक्ष पर हमारे मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी के जरिए। पंडित जी को हम सब की तरफ से कहिए उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

और प्रोग्राम का इस भाग जो आप अभी सुने, नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम लोग बना सके किसी के मदद से जो गुप्त दान की है, तो इनकर तरफ से आप हर एक सुनने वालों को फिर बधाइयां पेश है नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। शुभ नवरात्रि। और जो गुप्त दान दिए है हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बधाइयां नवरात्रि के उपलक्ष्य पर।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

तुम मेरे पास जब आ जाओ तो जाया ना करो, और जाने के इरादा हो तो फिर आया ना करो। मेहदी हसन से आप सुने।

मेरे साथ है, दुनिया तेरी तरफ है और खुदा मेरे साथ है। पंकज उदास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर और प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

को हंसने की आदत ना होती तो फूलों को खिलने की चाहत ना होती। अनुप जलोटा से आप इस सुंदर गजल को सुनें।

अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं। पंकज उधास जी की आवाज में आप सुने गीत और गजल की दुनिया, प्रोग्राम का नाम।

ये कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, इन दोनों से आप सुने फिल्म साथ साथ से गजल। हरिहरन जी की बारी है।

हरिहरन से आप सुने कि याद पिया की जब आए ये दुख सहा न जाए। उजाला रेडियो प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया हर एक इतवार की रात यहीं पर आपकी खातिर। और आप जो सुन रहे हैं तो ये तो हमारी खुशनसीबी है, सुनने के लिए शुक्रिया।

तसव्वुर है ये किसका खजाना है, जगजीत सिंह की आवाज में आप सुनिए। और सुनने वालों, घड़ी की तरफ देखते हुए तो अब एक आखिरी गजल आज का प्रोग्राम में आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। और हम इस वादा के साथ आपसे रुखसत हो रहे हैं कि आने वाले हफ्ता ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के आपसे हम मिलेंगे। सुनने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया और आप हर एक को शुभरात्रि।

उजाला पेश करे है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एतवार एक तारीख नवंबर जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर मीरवार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ओप्तोख्त में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, आविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदक इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से 2:30 से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्रामा क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ओप्तोख्त क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंकी ग्रेटेस ग्रेटेस खर्दरोब और ग्रेटेस टॉयलेट गब्रेक। जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfort.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाए के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली

0: फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदाग 1 नवंबर के दिन में थिएटर द मेयरवाट अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।
1: तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो। तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खयाई बिनकोट रहो, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। उजाला रेडियो पर बनाया जा रहा है आपके लिए। इस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं और आपको सुनाते हैं गीतों और गजलें। इत्मीनान से आप बैठ जाइए, सुनने के लिए आपका मन प्रिय प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। पहला फनकार जगजीत सिंह होंगे आज।

अगर ये है जन्म का रिश्ता तो बदलते क्यों है। आप गजल को सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में।

दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, मेहदी हसन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

जैसे कि कश्ती वो बारिश का पानी, जगजीत सिंह की आवाज और इन्हीं की आवाज में एक और गजल पेश है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना गम छुपाने के लिए और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसी पर इस गजल को लिखी गई है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में, उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया।

0: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गुलाम अली साहब की आवाज में सुंदर गजल को आप सुने। और
1: अभी एक साहब ने फरमाइश की है पारा पारा हुआ पैरा हने जा, बहुत मुश्किल गजल है समझने में भी गाने में भी, तो वो उनकी फरमाइश एक शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर मैं मेरे तक फरमाइश की है, फिर उसके बाद अनाउंस करूँगा।

पारा पारा हुआ पैराहने जा। इसका लफ्जी माना यह है कि टुकड़े टुकड़े हुआ, पारा पारा हुआ, टुकड़े टुकड़े टुकड़े हुआ जिस्म का लिबास, पारा पारा हुआ पैराहने जा। फिर मुझे छोड़ गए चारागरा, मेरे साथ जो थे मेरे साथ थी वो मुझे छोड़ गए। इसका पूरा बस यही, अब आगे भी यही होगा। शुक्रिया, टाइम नहीं है बुरे बताने का।

उजाला रेडियो है ये, और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में अब हिस्सा ले रही है लता जी।

बात बात फूलों की लता जी के साथ तलत अजीज से आप गजल को सुने और अब एक और गजल जगजीत सिंह की आवाज में सुनिए। और ये उजाला रेडियो है, आपके साथ और हजारों लोग भी सुनते हैं और हजारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो शुक्रिया।

प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आप सुने और मेहदी हसन साहब अब हिस्सा लेंगे दोबारा आज का प्रोग्राम में।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं, दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर।